शिकाही परि मुकर है कराव है मुकर पाव है पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ। काट विहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे। होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मह लपटाई जरे। आंधकूप मह परयो प्राणी भरम गुबार मुह बंध परे। कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढ़ै बाह परे। बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हार चीना। भय आनंदा मिटे अंदेसे सर्ब सुख मोकाउ गुर दीना। रहाउ यान पते सब भई सियानप प्रभ मेरा दाना बीना। हाथ दे राखै अपने काओ काहू न करते काछ खीना। बाल जावो दर्शन साधु कै जिह प्रसाद हार नाम लीना। कहो नानक ठाकुर भारो सै कहू न मान्यो मान छीना। बिलावल महला पंजवा।

मैं राई गुरपुरे का जपया जाप। कहा करै कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि सारन परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बेलावल महला पंजवा। सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा काछ दुख ना व्यापै। आगे दरगह पूरन काम रहाउ। आप त्याग परिये नित सरणी गुरते पाइये एहो निदान। जन्म मरण की कटिये फासी साची दरगह का निशान। जो तुम करहो सोई भल मानाओ मन ते छूटे सगल गुमान।

मेद हार गुण गाए जम दूतन का उतरास अहे रहा। जेते पुनः चरण से कीने मान तन प्रभ के चरण गहे। आब न जान भरम भाव नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे। निर भाव होए भजहो जगदीसै एहो पदार्थ बड़ भाग लहे।

नाथ ही सहाय संतना। आब चरण गहे रहाउ आहे मान, अवर न पावै चरणावै चरणावै। उल ज्यो आलमकरंद कमल स्याओ कमल ज्यो, अनरस नहीं चाहै एकै हरला है। अन्न ते टूटी है देख ते छूटी है, मान हर रस कूटी है, संग साधु उलटी है।

नाम पछानो अजामल गण का जिह सिमरत मुक्त भय जी मां जानू रहाउ। गाज की द्रास मिटी चिट हु मह छिन हु मह जब ही राम बखानो। नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक भजन माहिल पटानो। अचल अमर निर्भय पद पायो जगत जाहे है रानो। नानक कहत भगत दक्षक हर निकट ताहि तुम मानो। बिलावल महला नावा हर के नाम बिना दुख पावै भगत बिना सहसा नह चूकै। गोर एहो भेद बतावै रहाओ कहा भयो तीर्थ ब्रात किए। राम सरन नहीं आवै जोग जाग निह फल तेह मानाओ जो प्राप जस बिसरावै।

मैं भजन राम को नाही ते नर जन्म अकारथ खोया जह राखोह मन माही रहाउ तीरथ करै ब्रत फुन राख नह मनुआ बस जा को नेह फल धर्म ताहि तुम जा मन हो साच कहत मैं जा कौ जैसे पाहन जल मह राख्यो भेद नाहे तेह पानी तैसे ही तुम ताहे पछान हो भगत हीन जो प्राणी कल मैं मोकत नाम ते पावत गुर यह भेद बतावै कहु नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै बेलावल अष्टपदिया महला पहला कर दसवा एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद निकट बसै निख है सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई बिन पै पय भगत न होई शब्द रत्ते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ ज्ञान ज्ञान कथ सब कोई काथ काथ बाद करे दुख होई काथ कहना ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पारू रहत न होई नावहो भूले थाउ न कोई नावहो भूले थाउ न कोई मन माया बंदे ओ सार जाल घाट घट प्याप रहे ओ बिखनाल जो आंजै सोदी सैकाल कारज सीधो हृदय रुमाल हृदय समाल सो ज्ञानी जन साबद लिबलाई मनमुख हमै पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वड़ियाई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कछोत वेद पुकारै भगत स्रोत सुन सुन मानै वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ा मंग गुरमुख सांत उत्तम करा मंग मानमुख जोनी दुख सहा मंग बंधन टूटे एक नाम वसा मंग मन्ने नाम सची पद पूजा किस वेखा नाही को दूजा देख कहाओ पावे मन सोए नानक कह अवर नहीं कोए बिलावल महला पहला मान का कहया मन सा करै हो मन पुन पाप उचरै माया माद माते त्रिपत न आवै त्रिपत मुक्त मन साचा पावै तान तान कलात सब देख अभिमाना बिरनावै किछ संग न जान रहा की चह रस भोग खुशिया मन केरी धन लोका तान भस्मै ढेरी खाकू खाक रलै सब फैल बिन सब दै नहीं उतरै मैल गीत राग घन ताल से गीत राग घन ताल से कूरे ग्रेह त्रेह गुण उचरै देह गुण उपजै बिन सह दूरे दूजी दुरमत दर्द न जाए छूटै नाम छूटै गुरमुख दारू गुण गाए धोती उजल तिलक गल माला अंतर क्रोध पढ़ैत नाट साला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुख थिया सूकर स्वान घर तब मंजारा पशु मलेच्छ नीच चंडाला गुरते मोह फेरे तेन जोन पवाइय बंधन बाध्य आया आइय जाइय गुर सेवा ते लह पदार्थ हिरदय नाम सदा किरतार्थ साची दरग है पूछना होए माने हुक्म सीजै दर सोए सदगुर मिलै ता तिसका जाणै रहर जाई हुकम पछाणै हुकम पछाण सचै दरवास काल विकाल शब्द भय नास रह अतीत जाणै सब तिसका तान मन अर्पै है एहो जिसका ना ओहो आवै ना ओहो जाए नानक साचे साच समाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी घर दसवां एक ओंकार सत गुर प्रसाद जाग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठ अभिमान बिन नावै बाज लहग निदान सतगुर सेव नाम बसै मन चीत गुर भेटे हर नाम चेत आवै बिन नावै होर झूठ परीत रहाउ गुर कहया साकार कमावहो शब्द चीन सहज कर आवहो साचै नाय वडाई पावहो आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दार घर महल ठाउर कैसे पावै हर जियो सेवी है अंतर जामी घाट घाट तिस घाट घाट अंतर तिस की जो जिस की जोत समानी घाट घाट यंत्र जिसकी जोत समानी तिस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभिमानै गुरमुख नाम सदा सदा खानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगन काट पापा मत खाई कंचन काया कुजोती जोत समाई सतगुर मिलिया वड्डी वड्याई दुख काटै हिरदै नाम वसाई नानक नाम रत्ते सदा सुख पाई गुर मत मान्या करणी सार गुर मत मान्या मोख द्वार नानक गुर मत मान्या परवारै साधार बिलावल महला चौथा अष्टपदिया घर ग्यारवां
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हाव मिटै अणदन रस हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरभउ ज्योति ज्योत मिलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खेन पल रह न सकाउ बिन नावै गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ एक गृहो एक गिरहो दस द्वार है जा के अहनिस तस्कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावै है मानमुख अंधुले खबर न पैया कंचन कोट बाहो मानक भरिया जागे ज्ञान तत्लिब लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहे थाप खेवट शब्द गोर पार लंघैया जामजा गाती नेड़ न आवै ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावै सदा दिन राती मैं हार जस कह ते अंत नव लहिया मनमुख गुरमुख मनुआ इकत घर आवै मिलाओ गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्स मन त्रिपतै श्रावण बाणी गोर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रैगुण माया मोह व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट साम एक दृष्ट साब सम कर जाने नदरी आवै सब ब्रह्म बसरैया एक दृष्ट साब सम कर जाने नदरी आवै साब ब्रह्म पास रैया राम नाम है जो दस बाई गुरमुख आपे अलख लखैया नानक दीन दयाल भय है भगत पाए हर नाम समैया बेलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जाल त्याव हो हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया सरण परे सेई जन उबरे ज्यो प्रहलाद उदार समैया रहाउ पार अठार है मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मान अभिमान बिछुड़ दूर गईया हार गात मित करता आपे जाने सब विद हार हर आप बनैया जिस सदगुर भेटे सो कंचन होवै जो तुर लिखे आ सुमिटै ना मिटैया रतन पदार्थ गुर मत पावै सागर भगत भंडार खुलैया गुर चरण इक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम बैराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण कहते भावनी कहिया बार बार खेन खेन पल कहिया हर पार न पावै परै परैया सासत वेद पुराण पुकार है धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया मनमुख पाखंड भरम बिगूते लोभ लहर नाभ भार बुडैया नाम जप हो नामे गात पाव हो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़िया हौमै जाय त निर्मल होवै गुरमुख परचै परम पद पैया एहो जाग जीवै एहो जाग वर्ण रूप सब तेरा जित लावह से कर्म कमैया नानक जंत जाय वाजह जित पावै चित राह हिच लैया बिलावल महला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हाओ बल बल सतगुर सत पुरखैया राम नाम मेरा प्राण वसाए सात गुर पारस हर नाम समैया जन की टेक हर नाम टिकैया सतगुर की धार लागा जावा सतगुर की धार लागा जावा गुर कृपा ते हर दर लहिया रहाउ एहो शरीर कर्म की धरती गुरमुख माथ माथ तत कढैया लाल जबे हर नाम प्रगासिया भांडै पाउ पवै तित अइया दसन दास दास होए रहिया जो जान राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प धरऊ गुर आगै गुर प्रसादी माया कथ कथैया मनमुख माया मोह आपे हो मान तृष्णा जल चिखैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया एहो मन नाचया सतगुर आगै अनहद शब्द धुन तूर वजैया हर हर उस तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोय अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लहिया मन हठ कर्म कराय अभिमानी ज्यो बालक बालू घर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खेन मह भिन्न भिन्न टह पैया हर सार सागर हर है आपे एहो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जल है समावह नानक आपे आप रमैया बिलावल महला चौथा सात गुर परचै मन मुद्रा पाई गुर का शब्द तान भासम दृढ़ैया अमर पिंड भये साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन सार संगत मिल रहीया कृपा करहो मनसूदन माधव मैं खेन खेन साधु चरण पखैया रहा उतजा गिरस्त भया बनवासी एक खेन मरुआ टिकै न टिकैया धावत ताए तदे कार घर आवै हर हर साधु शरण पवैया धिया पूत
छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गवन करैया पर भवन करै बूझै नहीं त्रिसना मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे मान मग है दिद सिद्ध चेटक चेट कैया त्रिपत संतोख मन सांतना आवै मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज ओत भोज सब वर्ण रूप जीव जंत उपैया साधु शरण परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वै चंडाल चंडैया नामा जय देहो कंबीर तिलोचन आओ जात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धान धन्ना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भक्त बछल अंगीकार करैया नानक सरण परे जग जीवन हर हर कृपा धार रखैया बेलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्राव केरी सोन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवरक जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मान लैया हाउ आकल बेकल भई गुर देखे हाउ लोट लपोट होए पैया रहाउ हाओ निरखत फिराओ सब देश दशांतर मैं प्राभ देखन को बहुत मन चैया मान तन काट दियो गुर आगै जेन प्राभ जिन हार प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आण सदेसा दे प्रभ के राजदे अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट दियो चरना ताल जो हार प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्राभ प्रबुद्ध है गुण कामन खार हार प्राभ लहिया भगत बच्छल वा को नाम कहियत है सारण प्रभु तिस पाछै पैया किमा सीगार करे प्राभ खुशिया मान दीपक गुर ज्ञान बलैया रास रास भोग करे प्रभ मेरा हाम तिस आगै जियो काट काट पैया हर हर हार कंठ है बनया मान मोती चूर वाड़ गहन गहनैया हर हर सरदा सेज बिछाई प्राभ छोड़ न सकै बहुत मन पैया कहै प्राभ आवर आवर किछ कीजै सब बाद सीगार फोकट फोकटैया कियो सीगार मिलन कहताई प्राभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करह तेरा वास पैया दया दीन करहो रख ले बहु दया दीन रख करहो रख ले बहु नानक हार गोर सरण समैया बेलावल महला चौथा मैं मान तन प्रेम आगम ठाकुर का खेन खिन सरदा मान बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी जव चात्रिक प्रेयो प्रेयो बूंद मुख पैया मेल मिल सखी हर कथा सुनैया सात गुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगै सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मान तान एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नीद न पैया वैदक नाटक देख भुलाने मैं हिरदय मन तन प्रेम पीर लगैया हाउ खेन पल रहन सकाउ बिन प्रीत मैं जाओ बिन अमल है अमली मार गईया जिन कौ प्यास होए प्रभ केरी तेन अवर न पावे बिन हर को दुईया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हाँ तेस विटहो बाल बाल घूम गईया अनेक जन्म के बिछुड़े जान मेले जा सात सात सात गुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल न पावे मन मान मुख भर मैया गोर गुर करत सरण जे आवे प्रावे आए मिले खेन ढीर न पैया कर कर किरिया चार बधाए मान पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के घर बेसुआ कै घर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत घर पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्राभ आन आन मेहंदी पीसाई आपे घोल घोल अंग लैया जिनका ठाकुर कृपा धारी बाह पकर नानक कढ लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी घर वार वा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपजा जा उपजा उपमा जात न कही मेरे प्राभ की उपमा जात न कही ताज आन शरण गही रहाउ प्राभ चरण कमल अपार

सार विखया कूप ताम अज्ञान मोहत कूप गह पूजा प्रभ जी लेहो हर नाम आपुना देहो प्राप तुज बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बाधि देह बेन भजन होवत खेह जाम दूत महापयान चित गुप्त कर्म जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए

ओ बिंद पूर्ण आस एक निमख रहन न जाए वड भाग नानक पाए तो प्राभ तुज बिना नहीं होर मान प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यों हेत आल कमल भिन्न न भेत ज्यो चक भी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यो तरुण भरत प्राण ज्यो लोभी है धन दान ज्यो दूध जल है संयोग ज्यो महा खुद अर्थ भोग ज्यो मात पुत है हेत हर सिमर नानक नेता ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हिरत निसंग मैं गलह कम है बंद ज्यो

एक अंकार निराला अमर अजोनी जात न जाला अगम अगोचर रूप न देखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावे तिस कौ बल जाई गुर प्रसार परम पद पाई क्या जाप जाप बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल कर दी सरहा दूजै भाई लगे पछताने जमदर बाधे आवन जाने क्या लै आवह क्या ले जाहे सिर जमकाल से चोटा खाहे बिन गुर शब्द न छूट सकोए बा खांड की नै मुक्त न होए आपे सच की आकार जोड़ अंड ज फोड़ जोड़ बेछोड़ धरत आकाश किए बैसन कौ थाओ रात दिनंत किए भाओ भाओ दिन किए कर वेखन हारा अवरना दूजा सृजन हारा तृतीया ब्रह्मा विष्ण महेशा देवी देव उपाय वेसा ज्योति जाति गणत न आवै जिन साजी सो कीमत पावै कीमत पाए रहया भार पूर किस नेड़ै किस आखा दूर चौथ उपाय चारे बेदा खाणी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा खाट तीन उपाय सो बूझै जिस आप बुझाए तीन समावै चौथे वासा प्रणवत नानक हमता के दासा पंचमी पंच भूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक भ्रम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द त्रिपता से एक रंग राते एक मार धूर एक दर घर साचै देख हदूर झूठे काओ नाही पात नाओ कब हो न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंध्या कोए छेरी पर मैं मुक्त न होए ताओ छूटे जा खासम छडाए गुरमत मेले भगत दृढ़ाए खसमी खाट दर्शन प्रभ साजे अणहत शब्द निराला वाजे जे प्राभ भावै ता महल पा बुलावै सब दे भेदे ताओ पात पावै कर कर वेश खपह जाल जावह कर कर वेश खपह जाल जावह सचै साचे साच समावह सप्तमी सात संतोख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावै सब पार मन साचा मुख साचा उपाए सच नी साने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साध सच नहि केवल कर्म अराध पौन पानी अग्नि बिसराउ तही निरंजन साचो नाउ तेस मह मनुआ रहे अलिवलाए प्रणवत नानक काल न खाए नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घाट घाट नाथ महाबलवंडा आई पूता इह जग सारा प्राभ आदेश आदरख वारा आर जुगादी है पी होग ओह पर आहो ओह अपरंपर करण जोग दसमी दान नाम दान इसनान आन दिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागै भ्रम भाओ भागै बिलम न तूठस काचै तागै जव तागा जग एवै जान हो अस्थिर चीत साच रंग मान हो एकादशी एक हृदय बसावै हिंसा ममता मोह हो चुकावै फाल पावै ब्रत आत्म चीनै पाखंड राच तत् नहि बीनै निर्मल निराहार निह केवल सूचै।

मेरे हर प्रभ भाव है सो करै। हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मिलाया। हर रस हर त्रापै राम मानसु जन्म हर पाई है हर रावण वेरा राम। गुरमुख मिल सो हागनी।

जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिलावन महला चौथा श्लोक हार प्रभ सज्जन लोड़ लहो मान वसै बड़भाग गुरपूरै वेखा लिया नानक हर लिबलाग शांत मेरा हर प्रभ रावण आइया मेरा हर प्रभ रावण आइया हो मैं बिख झागे राम गुर मत आप मिटाया हर हर लिबलागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम

राम। हम मूर्ख मुग्ध मिलाया हर कृपा धारी राम, धन धन गुरु साहब सहजन महाजन हम मारी राम, जिन बड़भागी बड़भाग।

या मिल मिल एकत्र होए सहज ढोए मान प्रीतो बजी मानिया मेल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम साब रस भो गोविंदवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पावन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरणी लागी सहज जागी सागल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी शांत धूरी हार मिले कंत बिछुने आनंद अणदिन वजह वाजे अहंग मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिबलागी बिलावल महला पंजवा भाग सुलखना हरकंत हमारा राम आनहद बाजित्रा तिस धोन दरबारा राम आनंद अणदिन वजह वाजे दिन सरैन उमाह तह रोग सोग न दुख ब्यापै जन्म मरण न ताहा रिद सिद्ध सुधा रस अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सोन सखी सहे लड़ी हो मेल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तेस प्राव काओ रावह राम कार प्रेम रावह तिसै भाव है एक नेमख पलक न त्यागी गह कंठ लाइय न लज्जाइय चरण राज काम चारण राज मन पागी भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कत हु न ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पद भी पाव है बिसमन बिसम भाई पेख गुण अबनासी राम कार गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बेकार नाठे देवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी

आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा मिलावल महला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सप्त गुर प्रसाद सलोक सुंदर शांत दयाल प्रभ सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभ भेटे है।

बिरहो भगवंत संगे होए मिलवै रागण राम चंदन चीर सुगंध रसाहा मैं बिख त्यागण राम ईत ऊता नह डोली है हार सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बिरावल महला पंजवा हर खुज हो बड़ भागी हो मिल साधु।

एकस स्योल बिलाए जन्म मरण दो कटी जाए सच्चे राय समाए सदा बिलावल आनंद है जे चले सतगुर पाए सत संगति बै पाओ कर सदा हरके गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी।

बन खंड जाइय चुनखाइया कंधा अजो बेकार न छोटाई पापी मन मंदा क्यों छूटा कैसे तरो भवजन निध पारी राख राख मेरे बीटोला जन सरन तुम्हारी रहाओ बिखा बिखा की बासना तजिया न जाई।

कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाहि दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आना लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझ हर हर रस लपट्यो हमारे कुल कौने राम कहो जबकि माला लई निपूते तब ते सुख ना पायो रहाओ सुनो जटानी सुनो दरानी अचरज एक पायो सात सू तिन मुड़िए कोय मुड़िया कोय क्यों न मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सोगुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैजन राखी हर नाखस नाख बिदरियो करके देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत हलै उदरियो बिलावल कौ हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के कु झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोलै तीन भवन पर साजा हाथ पसार सकै को जन कहो बोल सकै ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको त्रु प्रहलाद निवाजा बिलावल राख लेहो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत नकीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहो अमर जान संचिये काया इमाय मिथ्या काची गगरी जन निवाज साज हम किए तिसै बिसार अवर लगरी।

प्रसाद सफल जन्म मोका गुरु की ना दुख बिसार सुख यंत्र दीना ज्ञान अंजन मोका गुरु दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाओ नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन स्यो जियो समाना बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी असट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किश नहीं।

അകാല മുഹൂർത്ത് യുനിസവങ്കുര പ്രസാദ് राग गौड़ चौदे महला चौथा कर पहला जे मन चेता सुरख हर उपर तमन चंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब केश जो जिया वरता सब प्रभु घालिया किसै कायक तिल न गवाई हर तिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहया समाई मेरे मन आसा कर जुगदी सुगुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय सा निपलिया सबिरति जाई रहो जो दिशा माया वो कुटम सम्मत तिसकी आस लाग जन्म गवाई इनका किश हाथ नहीं कहा करे ए बपुड़े इनका वाहया कश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटम सब छाई जे किश आस अवर करे पर मित्री मत तू जान है तेरा कता कम आई ए आस पर मित्री भाव दूजा है खिन मैं झूठ बिन सजब जाई मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा घालिया सब थाए पाई आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करा वह तैसी को आस कराई किश किसी का हाथ नहीं नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई जन नानक की आस तू जान है हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है जोखन मैं किलविक सब करे बिनासा जे हर त्याग अवर की आस की जाय ता हर निफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेव हो सुख दाता स्वामी जिस सेव्या सब भुख लहासा मेरे मन हर ऊपर की जय प्रभासा जय जाइया तै नाल मेरा स्वामी हरे अपनी पैज रखा जन दासा रहाओ जे अपनी बिरथा कहाओ अवरा पह ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कढ़ासा अपनी बिरता कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी बिरता अवरा पह कही है अवरा पह कह मन लाज मरासा जो संसार है के कुटुंब मित्र भाई दीस है मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा जित दिन उनका स्वाव हो न आवे तित दिन नेड़ा को ना टुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुद उप करे दुख सुखासा तिसका या प्रभासा क्योंकि जय मन मेरे जो यंती अवसर रख ना सकासा हर जप मंत गुरु उपदेश ला जप हो तन अंत छाए जन हर प्रीत चितासा जन नानक जन दिन नाम जप हो हर संत हो ए छूटन का साचा प्रभासा गोंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सीत शांत शीतल मन अपना जैसे सकत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे माने अनदिन त्या

ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है जो हर त्यावै सो प्रधान जो चंदन निकट वसै हिरड बपुड़ा त्यो सत संगत मिल पतत प्रवान जो सब ते

प्रीतम की कोई बात सुनावै सो पाई सो मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजाव हो।

मित नाही ब्रह्म अविनाश करण पला कर शिव देव तिल नही बूज है अलाखा भेव प्रेम भगत जस आपे दे जग मै विरले के मोहे निर्गुण किश गुण किशु नाहे सर्व निदान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचा तेरी सेव कर कृपा दीजा गुरदेव गुण महला पंजवा संत काली अतरत बिधाराओ संत का निंदक आकाश ते टाराओ संत का राखो अपने जी नाल संत उधाराओ तत खान ताल

सिमरत नरसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माह निवास नारायण घट घट प्रगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे।

नारायण गायण बसत अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नारक दास गही गुंड महला पंजवा जा कहो राख रखनहार तिसका अंग करे निरंकार रहाओ मात गर्भ मह अगन जो है काम क्रोध लोभ मोह न पोह।

करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए। जो जो शरण पाया हर राय, सो दास रखे अपना कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओह करे खन मैं रुलता खाकू नाल। हैपी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रख

क्रोध इस तंते जाए राम रतन वसा मन आए सफल जन्मता का प्रवाण पार ब्रह्म निकट कर जान पाए भगत प्रभु कीर्तन लागा जन्म जन्म का सोया जागा चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद राव सच वापार दास चना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदिया महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरदेव सफल मूर्त सफल जाकी।

दुष्ट अहंकारी मार पचाए नंदक कै मुक्ति नो रोग जय जयकार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जपै गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल था निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे प्रवाहे सगल पै मिटे जन

जन एक त्याए जमुआता कह निकट न जाए जान निर्वैर निंदक अहंकारी जान पल मल निंदक वे जान पल मन है निंदक वे कारी गुर कह सिख सतगुरु त्याया जन उभरे निंदक नरक पाया।

मैं क्या जाना बाबा रे रहाओ, हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे,

गृह शोभा जा करे नाहे आवत पहिया खुदे जाहे वाक यंत्र नहीं संतोख बिन सोहागन लागै दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपी सर डोले चीत रहाओ सुहागन कृपन की पूती सेवक ताज जगत स्यो सूती साधु कै ठाडी दरबार शरण तेरी मोह कौ निस्तार सुहागन।

गोरख जागै गोरख सोजन गोए उठाली करते बार न लागै रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राके चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को धरती दीनी ये गुण विसरे सिद्ध साधक अर्जुन।

अथक ऐसा दीवा नीरत राए जित दीवै सब सो जी पाए रहो हसी मिट्टी सो जी होए ताका किया मन सोए करनी ते कर चका हटाल ऐतै उथै निभि नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझै कोए तित घट दीवा ने चल होए पानी मरै न बुझाया जाए ऐसा दीवा नीरत राए डोलै वाओ न वड्डा होए जापै ज्यो सिंघासन लो।

जब उस कौ कोई देवै मान तवि उप आपस उपर रखै गुमान जब उस कौ कोई मान पर हरै तब वो सेवक सेवा कर मूर्ख मुख बिरावे अंत ठगावे एकत ठहरो कहीं ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी किंडी खंड खंड जो मागे सो भूखा रहै इस संग रचै सो कछु ना रहै।

राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास नरास एह बित काटी बांदर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए बाजे अनहत बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन अपना गुरदेव नवाजा रहाओ।

ने अपने गुर स्यो आसा मनसा पूर्ण होवै पावै सगल निदान गुर स्यो रहाओ। दूजा नहीं जाने कोय सतगुर निरंजन सोय मानुख का कर रूप न जान मिली निमाने मानुख का कर रूप न जान मिली निमाने मान गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाहे।

0: संत की मित्र आई कर कृपा दी नोहर नामा पूर्व संयोग मिलाई रहो गुर का चरण चित लागा तन तन संयोग सब
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन
3: भरोसा सुन के ही बनता है हुण मैं अर्ज करा उस तो विरोधी कुछ सुन के अगर ओ मन ले तो भरोसा टूट भी सकता है।

किस तरह रब नूं मनदा ही नहीं, किस तरह रब हो सकदा, परमात्मा किस तरह हो सकदा। इन्ना दुख, इन्ना दुख। भरोसा तोड़न वास्ते हजारां साधन बार मौजूद ने, भरोसा जोड़न वास्ते च केवल सत्संग और कुछ भी नहीं, केवल गुरु नूं सुनना। भरोसा टुट सकदा है, पर बार बार सुनिया होया जो मनिया गया, मन के जो भरोसा बनया, ते भरोसा बन के भावना बन गए, भगती बन गए। हुण इहदे तन दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकदे ने भरोसा टुटेगा ना। हुण इह उबलदी देग दे च उबल सकदा है, इहदा भरोसा नहीं टुटेगा, इह समदृष्ट हो जाएगा। इह जलाद दे च भी परमात्मा नूं देखेगा अगर किसी ने इसके टुकड़े किए, यह भी परमात्मा नूं वेखेगा। जो दी से सो तेरा रूप करके हो जाएगा, समदृष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान समदृष्ट है, भगत समदृष्ट हो जाता है। समदृष्टि पहचान है कि इहदा सुनिया होया मन तो अगे लंके, भरोसे तो अगे लंके, भावना बन गए, भगत है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोए। भगत दी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्यों? भगत भगवान जैसा है, भगत परमात्मा जैसा है, भगत ईश्वर जैसा है। समदृष्ट हो जाता है, उहदे लई सब कुछ ईश्वरमयी हो जाता है। ए विसंसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। तरह तरह के वितक्रियां दे जीण वाले मनुख हो सकदा है अजे भरोसे च भी नहीं जी रहे। अजे सुनी हुई बाणी मन दा हिस्सा नहीं बनी, सरोते भी नहीं है। सुनिए मनिए मन कीता पा। भावना सुन के जिसदी बन गई है, सुन के जिसका भरोसा बन गया, खतरे च है, भरोसा टूट भी सकता है, कोई तोड़ के रख देगा। और मैं इस जिंदगी दे अंदाजन 46-47 साल हो गए ने मैनू कथा करदे, मैं चंगे चंगे बंदे देखे जिन्हां दे भरोसे टूट गए, गुरु तो भरोसे टूट गए, गुरुद्वारे तो भरोसे टूट गए, परमात्मा तो भरोसे टूट गए। कईयां दे ते बहुत छोटी छोटी गल ते भी टूटे। पिछले साल की गल, कैलीफोर्निया च एक सज्जन ने अखंड पाठ रखाया, और तिने दिन गुरुद्वारे बड़ी रौनक, दो हाल सन, एक दिन पाठ चलता रहा, एक दिन कथा कीर्तन चलता रहा, 24 घंटे लंगर चलता रहा। गुरुद्वारे दे जो कुछ चाहिदा सी उसने पुछाया और बहुत कुछ नवा बना दिता। उन्हें अथाह उत्थे दान किया, बड़ी उसकी महिमा भी हुई। दास वक वक शहरां तो विचरदा होया जद फ्रीमोंट पहुंचे, सुते सित उत्थे उसका मिलना हो गया। अंदाजे के मुताबिक महीना हो गया से, दास लॉस एंजलिस होर कई शहरां तो होके उत्थे पहुंचे। मैनू कहन लगा अपना ते हुण यकीन नहीं रह गया, गल खत्म। मैं कहा हद हो गई, हजारां डॉलर उस दिन आके खर्च कीते ने तुसी, पांडे नवे बनाए, कारपेट नवा तुसी बिछा दिता, इतनी रौनक, पाठियां नूं तुसी खुली माया दित्ते, लंगर तुसी ओ चलाया जो ब्याह शादियां दे सिलसिला नहीं बनदा। गल की हो गई? कहले कि मस्कीन जी आपां मुकदमे च हार गए, साडा निश्चा टुट गया, भरोसा ही टुट गया। इन्नी जिहा गल ना टुट, इन्नी जिहा गल। जिसका भरोसा बजे है, खतरे च है, कोई तोड़ के रख

में कह रहे हैं, भूखते मांगते मजबूर करेंगे, कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अनंत जन्मातों ए भूख जारी हो, तन दिया लोड़ा ने लोड़ा बड़ी सीमत ने, मन का लोभ है लोभ सीमत नहीं है, नहीं है। ज्ञान पूर्वक सरवण करना, तन दिया लोड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो पशुआ की लोड़ा ने वही साड़ी लोड़ है, पर तन की लोड़ नो जग मन लोभ बना रहना है। इसे एक निका जहा मैं उदाहरण दे दिया, जैसे भोजन की भुख है तो ठीक है, मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा, चलो चार पांच खा लेगा, त्रिपत हो गए, तन ते रज गए, तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा है, जे और खाई भुख नहीं है, ये खा रहे है, ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया, ये तन की लोड़ नहीं है, ये मन का लोभ बन गया। इस वास्ते कई ते कहने ने कि करिए, पेट ते भर गया पर मन नहीं भरिया, मन भरदा भी नहीं, क्यों? तन दियां लोड़ां मन दियां लोड़ां ही नहीं है, पर तन दियां लोड़ां नूं भ्रांति करके मन ने अपनियां लोड़ां समझ लिया। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जो मन मन लैंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन की दुनिया च नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देंदा है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या तो है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा, मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लैंदा, मन मन लैंदा, मन पदार्थ नूं मन लैंदा है परमात्मा नूं नहीं मनता, मन परिवार नूं मन लैंदा है निरंकार नूं नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हों खुले दिल नाल कबूल करना होंदा है, मन धन नूं मन लैंदा है मन धर्म नूं नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नूं मन लैंदा है संसार नूं मन लैंदा है मन करतार नूं नहीं मनता। जे तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है तां ही ते आया, कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं गुरुद्वारे जा रहे हैं मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं जप तप कर रहे हैं कथा कीर्तन सुन रहे हैं मन मनदा है, गुस्ताखी माफ ते माफ कर देना। गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनदा है बाकी नहीं मनदा। इस संबंध च मैं दो श्लोक थोड़े सामने रखने हां ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी का। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां का सिरलेख एको ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी का इत्थे श्लोक बावन अखरी बाणी का नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग विच गुरु अर्जन देव जी ने और गौड़ी राग विच भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है, क्यों? आवाज ते पशुआं कोल भी है,
कौवा भी काय काय करता है, शेर भी करे, गौ भी बोल, पंछी भी चहचहाते हैं, आवाज से पशुआ कोल भी है, अल्फाज नहीं है, धुन ते पशुआ कोल भी है, अखर नहीं है, अखर नहीं है। तो धुन तो आवाज तो पशु की होंद का तो पता चल जा, और केड़ा पशु है यह भी पता चलता है, ये शेर की गर्जन है, इस आवाज तो ही पता चलता पे कोयल है, इस आवाज तो ही पता चलता पे कौआ है, आवाज तो यह तो बोध होंदा है कि आवाज किस दी है, पर जिस दी आवाज है उसनु पूछिए तू कितों आया, किथे जाना है, की लभ रहा है, इस सब कुछ कहण वास्ते उहदे कोल अल्फाज नहीं है, अक्षर नहीं है, इस वास्ते पशुआं दा सारे दा सारा विकास रुकिया, हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, फिर हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज नहीं है, इसका जिन्ना बैरूनी विकास होया है सब अखरां दे आसरे दे होया है, अखरी नाम अखरी सारा अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वा, अखरां सिर संजोग वखा, शिक्षा दी साहब ते कहंदे ने मनुख नूं वेख के कुछ भी नहीं पता चलता ये मनुख की है, वेख के इतना ही पता चलता है इतनी इहदी उम्र कितनी होवेगी, उम्र का बोध हो जाता है, रंग का बोध हो जाता है, नैन नक्श का बोध हो जाता है, कद बुद्ध का बोध हो जाता है, कपड़े की पाए ने कैसे पाए ने इसका बोध हो जाता है, लेकिन ये मनुख की है कुछ भी नहीं पता चलता, सेक्स का पता चल जाता है, मेल है फीमेल है इन्ना पता चल जाता है, स्त्री है पुरुष है इतना ही पता चलता है, पर यह है कि रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, शांतमयी है, क्रोधी है, धार्मिक है, अधार्मिक है, वेख के कुछ भी नहीं पता चलता, उक्की नहीं पता चलता, फिर किस तरह पता चलता है मनुख नूं किवें पढ़िए ये मनुख की है, साधी कहंदे ने तां मर्द सुखन ना गुफ्ता भाषण ऐबो हुनर निहुफ्ता भाषण, पंज दस दिन उसकी संगत करिए उसकी बोल चाल तो पता चल जाता है धार्मिक है कि अधार्मिक है, मूर्ख है कि सियाणा है, क्रोधी है कि शांतमयी है, जल्दबाज है कि धीरजवान है, ये दस बारह दिन उसकी संगत करदे आ उहदे बोलां नूं सुणदे आ सब कुछ पता चलता है, मनुख अपने बोलां तो पहचाणिया जाता है की है, शकल सूरत तो सिर्फ शकल सूरत का ही पता चलता है, रंग का पता चलता है, कद बुद्ध का पता चलता है, नैन नक्श का पता चलता है, रंग का पता चलता है, कपड़िया का पता चलता है, सेक्स का पता चलता है, पर यह मनुख की है नहीं पता चलता, तां मरदे सुखन ना गुफ्ता भाषण ऐबो हुनर निहुफ्ता भाषण, सिर्फ बोलां तो मनुख की पहचान ही नहीं आती, मनुख का विकास भी सारा बोलां दे खड़ा है, अखरां दे खड़ा है, अगर मनुख को अल्फाज बोल खो ले जान ना हो तो मनुख उथे ही चला जाएगा जिथे पशु है, सारा विकास रुक जाएगा, जैसे कि मैं एक उदाहरण दिया, गुंगे का सारा विकास रुकया है, क्यों, इहदे कोल बोल कोई नहीं, इहदे कोल अल्फाज कोई नहीं, इहदे कोल अखर नहीं है, सीमत जैस दी दुनिया है, इस वास्ते पंजाबी च कहंदे ने गुंगे दे इशारे गुंगे दी मां जाने और कौन जाने, होर किसी नूं कुछ नहीं पता चलता की है, गुंगा मनुख कोई चोटी का संगीतकार नहीं देखा गया, कवि दार्शनिक नहीं देखा गया, गुंगा मनुख कोई चंगा व्यापारी भी नहीं देखा गया, गुंगा मनुख राजनीतिक भी नहीं देखा गया, जो धार्मिक ग्रंथां की पड़चोल करिए कोई गुंगा ऋषि मुनि भगत संत भी नहीं देखा,
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬਣਦਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਮਾਨ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਧਣਾ। ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ। ਦੋ ਬੋਲ ਐਸੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਚ ਹੈ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਵਰ, ਘਰ ਦੀ ਚੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਆਪਦੀ ਗੈਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕਿਆਰੀ ਬਣੀ, ਇੱਧਰ ਕਿਆਰੀ ਬਣੀ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਲ ਕਿੜੇ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਲ ਕਿੜੇ, ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਰੰਗਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੋ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਸਤੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਗੀਚੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾ। ਜੈਸੇ ਬਗੀਚੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਗੀਚਾ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਡੁੱਬ, ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਚਲੀ। ਉਹ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਸਭ ਖਰਾਬ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੌਲੇ ਮਨ ਮਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲ। ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲ। ਬੋਲ ਜੋ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਬੋਲਾਂ ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੋਲ ਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਚਤਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਆਪਦੀ ਗੈਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
उतने शाखां ऊपर उठन गया जो बोल गहरे नहीं होंदे वो बोल उच्चे भी नहीं होंदे। उच्चे बोल गहरे बोल मधुर बोल ये महानता की निशानी है। मनमत हौली बोले बोल गुरु नानक देव जी महाराज कहते हल्के बोल छोटे बोल मनुख दे छोटे होने की पहचान। तो हुण मैं अर्ज करां मनुख दी दुनिया की सारी हलचल भाईचारा ते संबंध मनुख दी बहुत सारी दुनिया की कल कलेश लड़ाई ते झगड़े 99% बोलां दे आसरे ते चल रहे। बोलो दो बोल बोले प्रीत टुट गए दो बोल बोले ओपरे बेगाने अपने हो संबंध सारे जुड़ते हैं बोलन ना जिथे संबंध ना होवन मनुख कह देंदा साड़ी उत्थे बोल चल नहीं है नहीं वेखदा मनुख सारिया नूं है लेकिन वेखण दे नाल संबंध नहीं जुड़ते बोलन नाल जुड़ते। एक सियाणा मेहमान ते सिर्फ एक दिन दे ची अंदाजा ला लैंदा है वक्ती तौर ते सही पति पत्नी दे संबंध टुटे हुए ने क्यों बोलदे ही नहीं। दो भरावां दे संबंध दे दीवार खड़ी है क्यों बोलदे ही बोलदे ही। जिथे बंदे दा संबंध होवे मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है उत्थे साडी बोलचाल है। मनुख दी दुनिया दी सारी तामीर ते मनुख दी दुनिया दी सारी बर्बादी 99% बोलां ते खड़ी है। ऐसे बोल धर्म ग्रंथां दे जिन्हां नूं पढ़ के ते जप के मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है पर ऐसे बोल फैश लिटरेचर दे गंदा साहित्य किताबां दे जिन्हूं पढ़ के मनुख बिल्कुल शैतान हो जांदा। कुछ अखर ही ने उन्होंने मनुख नूं भगवान बना दिता कुछ अखर ही ने जिन्होंने मनुख नूं शैतान बना दिता। एक सच्चाई है बहुत वड्डी सच्चाई है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अर्जन देव जी भगत कवि अपनी बाणी च अखरां दी महिमा बयान करदे और उन्हां बाणियां दे नाम ने आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी तख्ती अखरां दी महिमा गौड़ी मल्ला पंजवां बावन अखरी गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरे हैरानगी हुई सी मैनू अखरां दी महिमा दे उत्ते इतनी मेहनत की इतना कुछ समझाया गया और एक एक अखर दी मनुख सही वरतों करे। चलो हथ दी किधरे गलत वरतों हो भी गई है पैर किसे गलत पासे चले भी गए ने शायद इतनी तबाही ना होए जितना गलत अखर वरत के तबाही हो जाए बर्बादी हो जाती है नुकसान हो जाता है या मिलाप हो जाता है कुछ प्राप्त हो जाता है। दूर क्यों जाइए वाहेगुरु शब्द दो अखरां दा जोड़ है राम अखर दो अखरां दा जोड़ है कि ये दो अखरां दा जुड़िया होया अखर जब जब के मनुख राम दा रूप हो जाता है परमात्मा दा रूप हो जाता है। बोल ऐसे कोई बोले राम दा रूप हो जाता है बोल ऐसे कोई बोले निरा शैतान बनता है। मनुख की दुनिया की महिमा सारी अखरां दे खड़ी भगत कबीर कहने ने एक एक अखर तो मैं की उपदेश रहे हैं एक अखर ने मेरे लिए केड़ी दिशा बनाई एक अखर ने मैनू की सोचण दे जो है मजबूर कीता। मैं इस वक्त एक अखर लैंदा क्योंकि 52 अखर कबीर दे ते 52 गुरु अर्जन देव जी दे ज्यादा नहीं तो फिर 52 दिन ते चाहिए ना खोलण नूं सुणन नूं समझाण नूं पढ़न। हां इको शहर विच मैं इहदी कथा जरूर कीती जम्मू च 52 अखरी कोई 1.5 महीने समाप्ति हुई सी 52 अखरी। इस वक्त एक अखर नूं लैंदा
ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੀਏ ਖੋਜ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਦੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਨ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਮਨ ਸਖਤੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸਿਉ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਹੋ ਜੀ। ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਵਕਤ ਕੱਢਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਝੂਮ ਝੁੰਮ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ? ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਬਲਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਬਲੇ ਵਜਾਓ, ਵਾਜੇ ਖੜਕਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਛੈਣੇ ਖੜਕਾਓ, ਗਲਾ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਲਾਪ ਕਰੋ,
ते दिमाग दिया नसा नु ढिला करके फिलसफा घोटो, कथा कहानियां करो, सेवा करो, पुन करो, दान करो, अमृत वेले उठो। मैं दावे नाल कहना सब कुछ कर दिया भी उदी याद नहीं आऊंगी, नहीं जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता, मन उसनु याद नहीं करता, उदे लई कोई समा नहीं, उदे लई कोई वक्त। कबीर कहिंदे मैं साधना पिया करदा कि मन नु मनाण दी, मन परमात्मा नु परमात्मा करके मन लगे, मन लगे दिन रात यतन पिया करदा। पर मैं अवधि ज्ञात लई अर्ज करा, एक हकीकत है, मन नहीं मनदा उन्हां दा जो गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, मंदरां च नहीं आउंदे, उन्हां दा मन भी नहीं मनदा जो आण के बैठदे ने, नहीं मनदा। अपने अनुभव द्वारा कहना नहीं मनना। तुसी आखोगे एक गलत गलत बयानी है, मनदा तां ते आ गए, तां पाठ कर दे, तां गुरुद्वारे आ गए, तां मंदिर आ गए, तां मस्जिद विच आ गए, नमाज पढ़न, खुदा नूं खुदा करके मनदे हां, परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदे हां, नहीं मनदे। फिर क्यों आया, ये फिर गुरु अर्जन देव जी खोलते हैं, और गजब की गल ध्यान नाल सुनना, मम्मे अखर कोई खोलता, मां अखर वो बावन अखरी कबीर दी, ये बावन अखरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। महाराज इस श्लोक विच कहिंदे ने मनुख परमात्मा नूं मनदा नहीं है, मनुख परमात्मा कोलो मंगदा, मनदा नहीं है। मंग पूरी हो जाए तो संबंध टुट जाता है, मंग ना पूरी होवे तो संबंध टुट, गल खत्म। संबंध ते सिर्फ मंग दा। तो हुण अपने पावन पवित्र श्लोक दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने, मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सुजाना। मंगदा ऐ दे ऐ दे ऐ दे ऐ दे, क्या परमात्मा देंदा है, देंदा है। आख है मंगे दे दे, दात करे दाता दे, मंगदा है वो देंदा है, मंगदा है वो देंदा है। जो दे ही जा रहे हैं उस नाल जुड़ी जा रही है, जो देंदा पे है उस नाल टूटी जा रही है। हकीकत है मम्मा मांगन हार इयाना, इयाना है जो मंगण दा संबंध परमात्मा नाल जोड़दा है, इयाना है कि जो परमात्मा नाल मनण दा संबंध जोड़दा है, मनदा है, प्रभावित है, वो इतना स्याणा है। महाराज कहिंदे ने मन्ने हकीकत कही ना जाए, जेको कहे बचे पछतावे, उहदी ते महिमा बयान ही नहीं कीती जा सकती जो परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा। इतनी सौखी खेड ना समझ, असीं मनदे हां गुरु नूं, आए हां गुरुद्वारे, नहीं मंगदे हां, कुछ चाहिदा है, कुछ कामनावां संसार तो नहीं पूरियां होंदियां, शायद गुरु तो पूरियां, कुछ कामनावां परिवार तो नहीं पूरियां होंदियां, शायद गुरु तो पूरियां, कुछ खेड बाजार विच नहीं बन सकी, शायद गुरु कोल बन जाए, कोई खेड मित्रां पुत्रां कोल नहीं बन सकी, शायद प्रभु कोल बन जाए। मंगण दा संबंध गुरु अर्जन देव जी महाराज फिर उसे ही श्लोक विच कहिंदे ने, मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सुजाना, पर जो मांगे तो मांगे बिया, जानते कुशल न कबहू थी। बिया लेंदी पंजाबी दा अक्षर होवे, इहदे अर्थ बन जाने ने होर, बिया मंगदा है होर मंगदा है। ते बिया शब्द चढ़दी पंजाबी दा होवे, अमृतसर जलंधर दे जो बोली जाती है, पर बिया दे अर्थ ने परुथा, बई रोटी है, बिया भोजन है, परुथा भोजन है। इत्थे जो अर्थ बनते ने वो लहंदी पंजाबी का शब्द है, होर मंगता है, जो मांगे तो मांगे बिया, परमात्मा को जो कुछ भी मंगता है परमात्मा नु छोड़ के होर मंगता है। ऐ ऐ दे ऐ दे ऐ दे, ऐ मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए। फिर परमात्मा आखे मैं भी आ जावा तेरे घर, ना ना तेरी कोई लोड़, तू एक पास तेरी लोड़,
ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है। So the Musia baby, yeah.
3: Mercy.

छह साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

खून ते बिंद भोजन तो बनता है। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। ये बिंद तो बनता है माखी रकत पिता बिंदारा। पिता दा बिंद मां दा लहू। लहू भोजन तो बनता है, बिंद भोजन तो बनता है। इंज कलो त ए अनमई कोश भोजन तो बनया, रोटी तो बनया। जद बनया भोजन तो है तो फिर ए जीवेगा भी भोजन दे आसरे थे। बिना भोजन तो नहीं जिंदा रह सक। बनया जो भोजन तो है, ए अनमई कोश बनया जो रोटी तो है, रोटी तो बिना नहीं रह सकता। ये रोटी तो बनया होया शरीर अंतिम समय तक रोटी मंगेगा, भोजन मंगेगा, अन्न मंगेगा। लेकिन मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश रोटी तो नहीं बनया, भोजन तो नहीं बनया। वो फिर किस तरह बनया? जिथे लंबी यात्रा करके तन रोटी तो बनया, रोटी पच के किधरे खून बनी है, रोटी पच के किधरे बिंद बनी है, फिर बिंद ते खून दा संजोग होया वासना करके फिर ए तन बनया लंबी यात्रा। मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश ये सीधा ब्रह्म तो आया है, परमात्मा तो आया है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछा। इस तरह मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश अति सूक्ष्म है, निराकार है। ये अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश आकार रखता है, वजूद रखता है। देख सकते हैं अपना तन, देख सकते हैं दूसरे का तन, देख सकते हैं। लेकिन असी दूसरे का सूक्ष्म शरीर नहीं देख सकते, दूसरे का मन नहीं देख सकते। थोड़ा जिहा यतन करिए, बहुत हिम्मत करिए कि किधरे अपना मन थोड़ा जिहा महसूस कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, कदी कदाई कोई कद गुरमुख। अपने सूक्ष्म शरीर दे दर्शन करता है कि ये शरीर मेरा की है। हुण दोहां दी तुलनात्मक गल मैं थोड़े सामने रखना चाहना। तन दे च श्वास चलदे ने, खून गर्दिश करदा है, दिल धड़कदा। मनमयी कोश दे विचार चलते हैं, यादां चलदियां, सोचनी चलती है। प्राण श्वासां दा चलना, दिल दा धड़कना, खून दा चलना, ये अन्नमयी कोश दी जिंदगी है। विचारां दा चलना, सोचनी दा चलना, सिमरती दा चलना, ये सूक्ष्म शरीर दी जिंदगी है। पर देखना पेगा विचारां दे च चलदा की है, सोचनी दे च चलदा की है, यादां दे च चलदा की है। कहिंदे ने वासना चलदी है, वासना चलदी है। वासना किस दी? प्रभता दी वासना, पदार्थां दी वासना, रूप दी वासना, ऐ चलदी है। यादां दे च, विचारां दे च, सोचने दे च। ए एक अध्यात्म विचार जिंदगी सारी कर्म कांड च ना लंघ जाए, इस वास्ते मैं ए अर्ज कीता है। एक कथा कीर्तन भी अस्थूल शरीर दी लोड़ नहीं है। थोड़े अन्नमयी कोश की पूर्ति इस कथा नाल नहीं होवेगी, कीर्तन नाल नहीं होवेगी, पाठ नाल नहीं होवेगी, जप नाल नहीं होवेगी। अगर इस

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 विच होया मिलता है, गुजरांवाला अजकल पाकिस्तान का इलाका है। सरदार महा सिंह पिता ने शुकरा चकिया मिसल दे आगू ते बीबी राज कौर दी कुख चों इस गांडीव सूरे का आगाज होया, जो जींद पत राजा गजपत सिंह की सपुत्री है। ये महाराजा रणजीत सिंह की वड्याई बड़ी प्रफुल्लित हुई, बड़े लकब असी उहदे लई चुने हुए ने। कोई शेरे पंजाब कहिंदा है, कोई सरकारे खालसा कहिंदा है, कोई लाहौर का बादशाह कहिंदा है, कोई पूर्व का नेपोलियन कहिंदा है, कोई पंज दरियावां का राखा कहिंदा है। ये सारे लकब गुरु की सेवा विच प्रफुल्लित होए ने। सतगुर सेविया वड्डी वड्याई, बाय सर्विंग द ट्रू गुरु। पूरे गुरु की सेवा करन वाला जेड़ा है वो बड़ियां बुलंदियां नूं हासिल करदा है। खैर, बचपन का समा है,

सुख है चाहे दुख है, सो जाना है जिन दाते दिए। हुण वो क्यों समा लाउंदा है सुख दुख देण लगा बीज बीजण तो बाद, जाए प्रालब्द दी जिहड़ी खेड है, पिछले जीवन विच कीते कर्मां दी जिहड़ी खेड है, ये पिछला क्रैडिट अगे किवें नाल चल रहा है वाहिगुरु जाने। कई बार बंदे दा क्रैडिट खराब होवे जां चंगा होवे, जो एक बैंक विच है दूजे बैंक विच खाता खिलाओ तो उही रन करदा है। इत्थे शरीर बदल रहे ने, जो तो ही तुरी आ रही है, तो ये लेखा पता नहीं कदों तो चल रहा है, ये वाहिगुरु जानदा है। कोई ज्ञानी ध्यानी इहदा जवाब नहीं दे सकदा, कुछ गल्लां वाहिगुरु ने हथ च रखियां ने। महाराज कहिंदे किस को दोष देह तू प्राणी, सहो अपना किया करारा है। कहिंदे किसे नूं की दोष देना है, आपां कई वार दिंदे वी गुआंढियां ने साडा नुकसान करता, कौन किसे दा नफा नुकसान कर सकदा है। कहिंदे जो बीजिया है उही वढ रहा है। दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष करमा अपणिया जो मैं किया, सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना। कहिंदे किसे नूं की दोष देना है, जो बीजिया है वह मैनू ही वढ़ना पवेगा। हुण जिहदा खेत है, जिहड़े किसान ने बीज बीजिया है उही फल प्राप्त करदा, गुआंढी थोड़ा वढ़ के लिजा सकदे ने। जे प्यो ने बीजिया प्यो भोगेगा, पुत्र ने बीजिया पुत्र भोगेगा, माई ने बीजिया माई भोगेगी, जगह नहीं बदली जा सकती। एक शायर बड़ा सोहना कहिंदा, कहिंदा तसव्वुर में ना जाने खातबे तकदीर क्या था, मेरा अंजाम लिखा है मेरे आगाज से पहले। तेरे आगाज तो आने तो पहला ही तेरी कर्मगत लिखी हुई है, तकदीर लिखी हुई है, प्रालब्द लिखी हुई है, उहदे अनुसार सुख दुख भोगी दे ने। कई बार बंदा कह दिंदा री बड़ी बाणी पढ़ना दुख नहीं कटे गए, क्रैडिट ही इन्ना खराब है हजे अकाउंट सैटल नहीं होना, ते नाले जो अज बीज रहा है कितें अजे थोड़ा फलेगा, समा लगता। कोई दुनिया का बीज नहीं अज बीजो तो अजे वढ़ लो। वह फलाना बंदा तो कहते पाप बड़े करता, वह तो खुश बड़ा है, हजे बीज रहा है, उड़ीक कर एक दिन वढ़ेगा। लेखे तो बचिया नहीं जा सकता, लेना देना देना पैंदा। बहुत ज़्यादा इबादत होवे बंदगी होवे ते भावें लेखा साफ हो जावे, नहीं तो भुगतना पैंदा है। खैर बचपन विच बहुत दुख आए महाराजा रणजीत सिंह दे। हुण महाराजा रणजीत सिंह दे पिता सरदार महा सिंह, 12 महान मिसलां जो सिख जगत दियां ने वख वख पंजाब दे हिस्सियां ते जिन्हां दा राज सी, उन्हां चों एक मिसल लैंदा पंजाब गुजरां वाले दे आले दुआले दे इलाके ते राज करदी है, शुकरा चकिया मिसल इहदे मालक ने। बचपन विच ही महाराजा रणजीत सिंह नूं गुजरां वाले दी धर्मशाला दे विच भाई फेरू सिंह ग्रंथी पासों धार्मिक विद्या पढ़ाई गई। बचपन दे विच ही शस्त्र ते शास्त्र विद्या विच निपुण होए, घोड़सवारी तलवारबाजी तीर अंदाजी विच महारत हासिल कीती। दोवें तरह की विद्या बड़ी जरूरी है साडे लई। गुरप्रसादी विद्या विचारै पढ़ पढ़ पावै मान, अध्यात्मक विद्या पढ़ोगे बाणी पढ़ोगे कोई साधु संत वाला रुतबा मिलेगा, लोक नमस्कारा करनगे, भाई रे संत जना की रेण, महाराज कहिंदे साधुआं दे चरणां दी तूड़ी बण। दुनियावी विद्या पढ़ोगे कोई अफसर बनोगे कोई वाइट कॉलर जॉब करोगे लोक अदब देणगे, तो बच्चिआं नूं धार्मिक विद्या दे नाल नाल दुनियावी विद्या भी पढ़ाउणी चाहीदी है। जे कम्यूनिटी दा सोसाइटी दा अपने धर्म दा भला करना है, पढ़ के टेबल टॉक करन दे योग होणगे बच्चे साडे फिर ही कुछ कर पाउणगे। लेबर नाल घर बनाया जा सकदा, कौमां दे भविख नहीं बणदे। ये ठीक है, आपां जिहड़े पहली

0: to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसि जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: तो मुड़ा को कहा करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हूँ मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सोक नानक।

निरंकार है न लइए नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करंदी आइए को रहे।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है।

0: पढ़िए जेते बर्स बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही सब पव्या ते तो लव्या

0: कुंभे बड़ा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बड़ा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े हो गुनगा साधन मारिए।

0: तुम्हा पुरा तपे का सत गिर तुम्हा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुम्हा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच में आशय सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद करनी।

ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो। महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तगा आपे बते बड़ते।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

ऐसे गणे जंतु पैसे धने जु सेवा सुख से संसर नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जंतु पिया तिस राजन जीव दिया तिस्ट्रा चाकर फिर डां लागे तिस के गल पो दर फिर दुखना एवड़ पाड़ जिस प्राणी सो पाए पंदर वाणी दूजी सेवा जीवन बिरथा कृष्ण है पूर्ण अर्था मां सेवा हृदय ले सास सेवा सब सहले जे लोड़े सासु पाए सासंग बताए उहां जपे के बिना सासन पारगण सगल तत्म तरन ज्ञान सर्व ध्यान विवेक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तना नान गुण में गाय सुनो संत महल पंजवा जिस बोल मुख पित है जिस मंदिर में सोए जिस राधे जम कृष्ण कह जिसकी सेवा सब श्रेय राम राम भो राम राम तय मन की सरकार जिनके तारे तन आकाश कर जिसका है प्रगा जिस सिमर पर उपनीत हुए अंधकाल फिर न रोए सगल धर्म उत्तम धर्म कर्म करतूर के ऊपर कर्म जिसको चाहे सुन्नत दे संसव लागु सेवा आद पुरख जिसकी आदान जिसको मिले हर नदान जिसकी गल में कहें जाए नानक जन हर हर त्याय संत महला पंजवा मन तन पीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किलव काटे सासन नाम जप्यो हर नाम रंग गुर प्रसाद संत बना चरण गुण हरदे वरतारे सरसा जस सुनर समरस स्वामी कारण कर्म हिनाद प्रभ तेरी शन जी जन तेरे आधार कार कृपा प्रभ लेह निस्तार प्रव खंडन दुख नाह दे सुर नर मंजन ताकि से तरन आकाश जाकी कलम आए तेरा दिया सब जंत खा है अंतर जामी

जब कृष्णा संताप गोविंद जब सब मिटे अंधेर हर सिमर कृष्णा है फिर संत हमारे राम रण संत जना सदा संढाव संत जने की उपदेश जय गोविंद भव सो तन दे सर भगत ध्यान थान गुरु प्रसाद कड़कड़ शान हर कीर्तन रस भोग मन पाव कर सदा संड नेट पे प्रभु करण हार ए तोत प्रभु प्रकाश सात चरण कृष्ण लड्डू त्यान कर कृपा प्रभु किन्नु दान तेरे संजन वाशो तू जब नाम स्वामी सदन जो संत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा हुर कृपा ते नित जब प्रभु रखवाले माई बाब जाकर सुने संतार प्रसन्न ते एक मन कृपाए हुर पूरे किसा सुने सच सेव रखा कण लाए रहाओ अपने जन प्रभाव रखे दो दूत सब प्रम सके बिन गुर सच न जाए देख दे संत रहताए फिर तू न कमिट सुनाए हुए अपना बीजा आपे खाए जनका रखवाला पे सोए जनको पहुंचना सर सोए प्रभु दास रखे फिर जतना अखंड पूर्ण जाको मृताव गुण गुण नितन नरसन गाय

कुर्बान है। जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जो पाया तृष्णा सर्वनाशी मंत्र ने सुख माय समाय जागरू हो दयाल हृपा ने सो गुण गावे को नानके बिरके संपे को गुरु पावे प्रसंत महला नौवा मन कह सा राम नाम तन बिनसे जम सो परिप्राण रहो ए जग तू ही का उपहार ते साचा मन के विचार धन दर संपत ग्रह का संगण चाले समझ ले एक भगत नारायण हो संग कहो नान भज ते एक रंग संत महला नौवा कहा भूल रे झूठे लोभ लाल कृष्ण बिगड़ो न अजो जा सम सुपने के जग जान बिन से साची मां संत रह मीत निवासर पर तार मीत बाद अंत के हुए सहाय कहो नानक गुण ताके गाय संत महला पहला वस्तु अष्टपदियां हर पहला दो तुकियां एक ओंकार सरगुण प्रसाद

मेरे बिन हर भगति दुख कनेरा सुख दुख दाते ठाकुर मेरे रोग बड़ो बंधु तीरा रोग बुझे सो काटे पीरा मैं अवगुण मन माय सिरिया ढूंढत खोज गुण मेले मीरा गुर प्राशव दारू हर नाव जो तू राख तिव रहाओ जाग रोगी कह देख दिखाओ हर निर्मा निर्मल नाव कर मे तर जो देह निकावे गुर महल सो महल बुलावे मन में मनवा चित में चीता है से हर के लोग चीता हर सोते रह नरासा अमृत चाख हर नाम वासा आवशा रह लागा जन्म जीत गुरम दुख भागा गुर दिया सच अमर पीवो सहज मरो जीवत ही जीवो अपनो प्यारा कुहर भावे तुमरो हित समावे भोगी को दुख रो व्यापे घट घट रव रह प्रभ जापे सुख दुखी ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे चीता संत महला पहला तुकिया

अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही तृप्तास जन्म जन्म के किल विकनास अगे दर गए होए खलास

ताका जन मन दुख नासा। कह नानक पाईऐ बड़भागी मंतन होए बेगासा। सारग महला पंजवां दुप दे कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद।

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

0: तेजे सब्जी भले खाना है, रोटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचने करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो 604-349-1313 यूनिट 103-8140-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। मनुख की बरतर परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दी कीती है। इस दी दुनिया कुछ बाहर पई है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दी अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल संबंध जुड़िया है, शरीर दे अंदर पए हुए पानी दा बाहर दे पानी नाल संबंध है, शरीर दी मिट्टी दा बाहर दी मिट्टी नाल जुड़िया हुआ संबंध है। असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। एक श्वास असी बाहर कढ़दे हाँ, एक अंदर लै लैंदे हाँ। जे सिर्फ अंदर लईए ते कहीए बाहर नहीं कढ़ना, तां वी असी नहीं रह सकांगे। और जे बाहर ही श्वास कढ़ दईए ते फिर अंदर ना लै जाइए, तां वी जीवना औखा होवेगा। इत्थों ही अध्यात्मवादियां ने यह तत् कढ़िया है कि असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। साड़ी दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। कुछ बाहर दी दौलत है, कुछ अंदर दी दौलत है। कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है, कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा, उस दी ते सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप दे च है। पर अंदर दा साडा की परिवार है, इस दी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज करांदे ने। दूसरी उदासी दा भ्रमण करके जद आप तीसरी उदासी दी पूर्ण रूप दे तैयारी करन लगे, तां आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आप नू प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, थोड़े बच्चे हैगन, थोड़ी पत्नी भी हैगी है, और परिवार विच रहना भी थोड़ा धर्म है, मुख धर्म है। तां उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उच्चारण कीते ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बकायदा दर्ज ने, आपने फरमान कीता, माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लैके जाना, और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं। परिवार मेरे नाल होंदा जिस पासे भी मैं जावां। तृप्ता जी हैरान हो गईआं कि परिवार नाल जांदा, असी सारे इत्थे ही आउंदे, कोई नाल गया नहीं। मरदाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं, पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है, और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये ते सुदाइयां वाली गल होई। अक्सर संसार दी दृष्टि विच भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्हां नूं पागल ही आख्या गया। कारण उन्हां दे विचार, उन्हां दे बोल समाज दा हिस्सा नहीं बनते सन, व्यवहार दा हिस्सा नहीं बनते सन। रोज़मर्रा दी जिंदगी विच उन्हां दे विचारां नूं, उन्हां दे व्यवहार नूं, उन्हां दे बचनां नूं ढालना बड़ी औखी गल हो गई। जिस तरह पागल दे बोल संसार नाल तालमेल नहीं खांदे, समाज दा हिस्सा नहीं बनते, भगतां दे बोल भी समाज दा हिस्सा नहीं बनते। इस वास्ते जिथे पागल समाज नालों टुट जांदा है, करीबन करीबन भगत भी समाज नालों टुट जाते हैं। अज तक का इतिहास यही कहता है। और गुरु नानक की बाणी ने तो साफ फैसला कुन गल कह दिती है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत ते संसारी का जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं, मेल कदी होया ही नहीं। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है, और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईआं, आखण लगे नानक जी तुसी वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहिंदा ही सी भई तू सुदाई है, अज मैनू भी कहना पएगा ये बोल सुदाइयां वाले ने, पागलां वाले ने, परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे, मां यह ते सोचण सोचण दी गल है, यह ते मनुख दे मनण मनण दी गल है। मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, मैं जिधर जाना मेरा परिवार मेरे नाल जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जाता है उहदे च मां है, पिता है,
साहब कहन लगे हाँ जिहड़ा परिवार मेरे नाल जांदा है उहदे च मां भी है। तो हुण ते हैरान होईआं ते खिड़खिड़ा के हस भी पईआं। पुत्तर तू वाकई सुदाइयां वाली गल करदा है, वाकई पगलियां वाली गल करदा है। मैं ते कदी नाल नहीं गई, मैं ते इत्थे तलवंडी दे च ही रही हां, पर तू कहिंदा मेरे नाल है मां। फिर सोची पै के कहिंदियां ने किधरे ऐसा ते नहीं तू मेरी याद नाल लै जाना है, ते यही आखना चाहता होवें ते मैं समझदी ना होव। साहब कहन लगे हां कहना ते कुछ मैं ऐसा चाहना मां, अजे भी तू नहीं समझी। कहिंदे ने भगतां तो ब्रह्म ज्ञानियां तो चार तरह के जड़े मनुख ने वो कोई लाभ नहीं उठाते। एक ते मां बाप, दूसरे शरीक, तीसरे जिगरी दोस्त और चौथे दुश्मन, ये कोई लाभ नहीं उठाते। ये उन्हां दी गल नूं समझना भी नहीं चाहते और उन्हां तो लाभ भी नहीं उठाना चाहते। तो ममता दी मारी हुई तृप्ता ममता दी दृष्टि नाल गुरु नानक नूं वेखदी है और गुरु नानक इस दुनिया तो बहुत उच्चे अगां दी गल कर रहे हैं। मां मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल आउंदा। क्या उस परिवार विच मां भी है? हां मां भी है। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया नानक जी दसो उस मां दा नां की है जो नाल जांदी है। तो सतगुर माता दा नाम दस दिन, परिवार दे सारे फरदां दा नाम दस दिन और ए शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर गौड़ी राग विच दूसरे नंबर ते आया है। सतगुर कहिंदे ने माता मत पिता संतोख है, सत भाई कर एहे विशेख। मेरी जो माता है वो शुभ मत है, चंगी मत है, ये कदम कदम ते मेरी रखिया कर दी है, मेरी हिफाजत कर दी है। असी उसनू यतीम कहिंदे हां जिसकी मां मर जाए, पर गुरु नानक कहिंदे नहीं उसनू यतीम ना आखो जिसकी मां मर जाती है, यतीम उसनू आखो जिसकी मत मर जाती है। जिसकी मां मर जाए वह जिंदा रहने के वसीले लभ लैंदा है, ठोकरां तो कई दफा बच भी सकता है, पर जिसकी मत मर जाए वह तो कदम कदम से ठोकरां खांदा है। बुद्धिहीन मनुख कदम कदम से ठोकरां खांदे ने। तो साहब कहिंदे ने कि चंगी मत, श्रेष्ठ मत, उत्तम विचार, उत्तम फिलसफा, प्रभु चिंतन, ये जिहड़ी चंगी मत है ये मेरी मां है और मेरे नाल है और हर कदम ते मेरी हिफाजत कर दी है, मेरी पालना कर दी है, मेरे ते ममता डुलांदी। तो ठीक है चंगी मत ते मां होई, पिता कौन है? संसार दे जितना सारा अनर्थ चल रहा है ये मत दे मरण नाल चलता है। जब मत मर जाए तो मनुख गुंडा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, चोर बन जाता है। दुनिया दे जिस जिस दी भी मत मर गई है उन्हां मनुखां दे कारण बड़ा अनर्थ है, जिन्हां दी मां मर गई है उन्हां दे कारण करके संसार नूं कोई हानि नहीं है, बल्कि वो ते विचारे दया दे पात्र ने। पर जिन्हां दी मत मर गई है वो ऐसे यतीम ने, कई दफा समुची मनुखता नूं यतीम बनाने दे च भागी बन जांदे ने। तो माता मत पिता संतोख, साहिब कहिंदे ने मेरे पिता दा नां है संतोख, ये हर हालत विच मैनूं खुश रखदा है। लोभ ते संतोख दी व्याख्या दो लफ्ज़ां विच करनी होवे तां इतनी है, जो कुछ है जैसे

आए ने प्रभु दे गीत गाए ने संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा और लोभी मनुख हर हालत विच पीड़ित होवेगा दुखी होवेगा परेशान होवेगा। साहिब कहिंदे मेरे पिता का नाम है संतोख। एक गाथा चेते आई है फाते आजम सिकंदर कहिंदे ने जद हिंदुस्तान नूं फतेह करन वास्ते आया लंबी चौड़ी सेना लैके तां जिस वक्त दरिया सिंध अबूर करन लगा सिंध दे तट दे ते एक अजीब मस्त फकीर लेटे होया सी रेत दे च। सेना सारी दरिया पार कर चुकी सी आखरी टुकड़ी दे च सिकंदर आप सी उस मस्त फकीर नूं वेख के रुक गया। बचपन तो ही सिकंदर फकीरां दा मुश्ताक रहा है। नेड़े चला गया रेत दे चलेटे होया ए महात्मा वेखदा है सिकंदर नूं पुछ बैठा सिकंदर किथे चलिया किहड़े पासे गमन कीता। सिकंदर कहण लगा फकीर साई मैं हिंदुस्तान फतेह करन चला लंबी चौड़ी सेना लेके। तो फकीर कहण लगा ठीक है ए दस जद तू हिंदुस्तान फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। आखण लगा फिर मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठना मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा जे तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। कहिंदे ने जितने चिर तक सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते खड़ा रहिंदा है। समाधान सही ना होवे तो समस्या अपनी थां ते खड़ी रहिंदी है। सिकंदर हैरान होया सवाल ते अपनी थां ते खड़ा मैं जो भी जवाब देना उहदे नाल सवाल मिटदा नहीं इस फकीर दा। तो उस फकीर ने कहा जे कल्पत कीता होया तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। तां सिकंदर कहण लगा फिर मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा मैं बैठे नहीं रहना मैं सुस्त आदमी नहीं हां मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा ठीक है पर सवाल ते अपनी थां ते खड़ा जे तू होर मुल्क भी फतेह कीता फिर की करेंगा। गुस्से च आके सिकंदर कहण लगा मैं सारी दुनिया फतेह करांगा जमीन दा एक इंच खिता भी नहीं रहण देंगा जो मेरे कब्जे विच ना होवे जो मेरी पकड़ विच ना होवे मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। सिकंदर सोचदा हुण सवाल खत्म पर नहीं फकीर फिर बोलिया अच्छा सिकंदर ये दस जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। इते खाबो ख्याल दे च भी नहीं सोचिया सी सिकंदर ने किस तों अगां भी कोई जवाब देना पेगा। सिकंदर जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। तो फिर सिकंदर कहण लगा फिर मैं अपने घर जावांगा आराम करांगा यूनान वापस जावांगा आराम करांगा। फकीर कहण लगा तू सौ पुआड़े पाके आराम करेंगा ते असी आराम कर रहे हैं असी रेत विच लेटे हैं असी आराम कर दे पए हैं जे तू आराम करना है ते आ इत्थे लेट जा असी आराम दे चा तू सौ पुआड़े पाके आराम करेगा ते असी आराम दे चा इत्थे तू स्वयं अंदाजा लगा तू अगे है कि असी अगे हाँ। इतिहास गवाह है हिंदुस्तान तो वापस जाते हो सिकंदर रस्ते देच ही दम तोड़ गया उन्हों आराम नसीब ना होया। मनुख की कई दफा सारी भज दौड़ आराम वास्ते आती है ते आराम उसे दिन नसीब आता है जब चार मनुख चुक के चिता ते रख दें दिन इस तो पहले आराम कितने भज दौड़ है आराम वास्ते पर भज दौड़ मनुख दे कोल रह जाती है आराम नहीं रह जाता। पर जे मन विच संतोख होवे ते ऐसा मनुख हर वक्त विश्राम विच ऐसा मनुख हर वक्त आराम विच है उदी भज दौड़ विच भी कुछ विश्राम होवेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान संतोख मेरा पिता है मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम विच रखदा है आराम देंदा सुकून देंदा। माता मत पिता संतोख सत भाई कर एह विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया नानक जी ये तो गल समझ दे च आ गई कि जो मत है श्रेष्ठ मत है ये थोड़ी मां है जो संतोख है
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा आगम अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है, लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसे भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान कीता, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान कीता है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़े आवे है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा, अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है, फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇਗੀ।

तक पहुंच गई और इस तरह के लोग ही जीवन मुक्त होंगे। प्रभु की आ गया आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कावे, वो जीवदियां जी मुक्त हो जाता है। कहत कबीर जो हर दयावे जीवत बंधन तोरे। सतगुरु इस तरह की अवस्था इसी जीवन दे साड़ी बना देन ताकि बार बार काल दे वस ना पईए। जन्म दे वस जो पै रहा है काल दे वस पएगा, पर इसी जीवन दे जिदी दृष्टि काल तक पहुंच गई है वो काल दे वस नहीं पएगा, अकाल दे लीन हो जाएगा। उसे नु कह सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। इतनी विचारां प्रवान करनिया, बाकी कल गालबन 15 तारीख तक दास ने थोड़े चरण परसने ने गिला है। बहुत सारिया संगतां दा वेद की टाइम थोड़ा है, पर 400 साल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा महिमा भरा है। यह पुरब सारी दुनिया च मनाया जा रहा है। दो दो चार चार दिन दास ने वक वक मुल्कां च वक वक शहरां च दिते हुए ने, तो इस तरह की कोई भजदौड़ है। इतनी सेवा 15 तारीख तक थोड़े चरण परसांगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अपने इस ज्ञान दे सागर दे छा खजाने दे छा जो जो दात बख्शिश करनगे तुझ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखण दी निवाणी कोशिश करदा रवांगा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है। So the most yeah, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।